अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: भगवान की
1: जय।
0: श्री आनंद कंद भगवान की
1: जय।
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की।

नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

श्री गोविंद गीता अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन श्री कृष्ण को सृष्टि का सृजक, पालनहार, अजन्मा अविनाशी परम पुरुष स्वीकार करते हुए पूछता है कि हे प्रभु, आप इस दृश्य जगत में कैसे व्याप्त

श्री भगवान अपने विस्तारों को असीम व अनंत कहते हैं, फिर भी कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही विस्तार है। परंतु हे परंतप, यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक अंश के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शक्ति आ रही है, पानी बढ़ता जा रहा है।
1: भागो!
0: हर वर्ष बाढ़, हर वर्ष तबाही, हर वर्ष विनाश और बर्बादी। हमें इस उछलकर जल प्रवाह को रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा।
2: उछलकर जल प्रवाह, उछलकर जल प्रवाह की कहानी दशकों पहले की है। मैं शताब्दियों से निर्भीक प्रवाहित होता चला आ रहा था, अपनी शक्ति का परिचय देता हुआ, अपने पाषाणी तटों को उत्क्रमित करता हुआ, मानवीय शक्ति को चुनौती देता हुआ।
3: लगता है तुम दामोदर हो।
2: हाँ, मैं दामोदर हूं। नदी नहीं, नद, ब्रह्मपुत्र, शोणभद्र जैसे इन्हीं गिने नदों में एक। पुराणों में मुझे बार बार नद ही कहा गया है।
3: अच्छा है, तुम अपना परिचय स्वयं देने लगे, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे।
2: परिचय चाहिए तो चलो मेरे उद्गम स्थान को, वहीं से चलो मेरे साथ साथ। हाँ, यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, 3000 वर्ष से भी पहले। यहां मुझे देखकर कौन समझेगा कि मेरे भीतर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। यह उद्गम स्थान कोई गंगोत्री नहीं है, यमुनोत्री नहीं है, एक पहाड़ी जल स्रोत का उद्गम स्थान है।
3: यह स्थान है बिहार के छोटा नागपुर में, लोहरदगा जिले के पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच। यहीं से दामोदर की पतली धारा निकलती है। चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरी पहाड़ियां, ऊपर खुला आकाश, सुबह की मुस्कुराती धूप, सांझ की लाल हंसी, पक्षियों का कलरव। यहीं से दामोदर का जल स्रोत फूटता है जो आगे चलकर विशाल नद में बदल जाता है। इसके भौतिक रूप का परिचय तो कोई भूगोलवेत्ता ही दे सकता है। प्रोफेसर डी पी सतपथी,
4: दामोदर नदी छोटनागपुर की पहाड़ियों से सिर्फ 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा की तुलना में यह बहुत छोटी नदी है। गंगा 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है, जबकि दामोदर सिर्फ 530 किलोमीटर की। बिहार में 290 किलोमीटर बहने के बाद यह पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भैरवी, बोकारो, कोनार, गोवाई और बराकर। गर्मी में कहीं कहीं सूखी दिखने वाली यह नदी बरसात में उमड़ पड़ती है।
3: पलामू की पहाड़ियों से उतरकर ये नदी आगे बढ़ती है। अगल बगल साल, शीशम, सेमल आदि के पेड़ों से भरे जंगल गाते रहते हैं। कहीं कहीं किनारे पर बसे गांवों का जीवन पर्व त्योहार मनाता हुआ नाचता गाता

सुनो, मेरी आवाज सुनो। दामोदर कमर पेट पहाड़ी से उतरकर यहां तक चला आया। किसी ने उसका ओजस्वी स्वर नहीं सुना। सुना लोगों ने मेरे तट पर बसे रामगढ़ में सैनिक छावनी का संगीत, सैनिकों का अभ्यास परेड। वहां प्रसिद्ध सिख रेजिमेंट की छावनी है ना। और उसके बाद आया है ये स्थान। ऊंचाई से सहसा नीचे उतरती मेरे जल प्रवाह को सुना।

0: जा सकता है। इसमें केवल मेरा नहीं भैरवी का भी स्वर है।
1: हाँ, ये दामोदर और भैरवी का संगम है, प्रसिद्ध तीर्थ राज तपा, जिसे अब लोग रजरप्पा कहते हैं। प्रकृति की सुंदर लीला भूमि है ये। यहीं एक प्राचीन शिला भूमि के ऊपर स्थित है माँ छिन्नमस्ता का।

0: मार्कंडेय पुराण में आया है, यही राजा सुरथ ने कठिन तपस्या से देवी को प्रसन्न किया था, इसी से इसका नाम पड़ा राजतपा। आज भी माँ छिन्नमस्ता के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
1: मानव विज्ञान के प्रोफेसर रमाकांत प्रसाद कहते हैं,
2: दामोदर नदी का मंदिर में सबसे मुख्य मंदिर है राजरप्पा, जो कि सबसे आराध्य देवी मानी जाती हैं, चाहे वो जनजाति हो इस क्षेत्र का, गैर जनजाति हो, पिछड़ी जाति हो या और कोई भी हो, इसलिए और यहाँ लोग जितने हैं वे शादी ब्याह मुंडन या जीवन संस्कार के जो भी हैं उत्सव सब का केंद्र उसी को मानते हैं।
3: मैंने इस मंदिर को बनते देखा है, इसे ही नहीं अपने तट के सभी निर्माणों को देखा है। मुझे याद है अभी कुछ दशक पहले तक मेरी विनाश लीला से लोगों में हाहाकार मचा रहता था।
1: बाढ़ आती थी, तबाही होती थी।
4: दामोदर अभिशाप की नदी के रूप में प्रसिद्ध रही है। इस नदी ने 3000 वर्ष पहले अपने तट पर एक गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया था, वही अभिशाप में बदल गई है। गत 700 वर्षों में बार बार इसमें बाढ़ आई, 20 तो बहुत भयानक रही। सन 1943 की बाढ़ ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हजारों गांव बह गए, महानगर कलकत्ता के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तब शासन ने दामोदर की चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया, बांधों की योजना बनी। 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन बिल पास किया और काम शुरू हुआ।
1: इस समय पंडित नेहरू ने कहा था, दामोदर घाटी योजना स्वाधीन भारत में प्रारंभ की गई महत्व विकास योजनाओं में एक है। इसने नए भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसी बड़ी योजना जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी को कार्यान्वित होते देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। कार्य प्रारंभ हुए दामोदर को बांधने के, केवल दामोदर नहीं उसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी, क्योंकि दामोदर की विनाशकारी शक्ति केवल उसकी शक्ति नहीं उसकी सहायक नदियों की भी थी। एक के बाद एक बांध बनने लगा। 21 फरवरी 1953 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बराकर पर तुलैया बांध का उद्घाटन किया।
5: 1955 में दामोदर पर दुर्गापुर बांध का,
1: 1957 में बराकर पर मैथन बांध का और 2 ही वर्ष बाद दामोदर पर संकेत बांध का।

0: और स्वाधीन भारत के नव जागृत लोगों ने मुझे बांध दिया, दाम शक्ति संपन्न दामोदर को बांध दिया। नए भारत ने मेरी शक्ति पहचानी, उसने शताब्दियों से आते हुए अभिशाप को वरदान में बदल दिया। अब मेरी शक्ति उसकी शक्ति बन गई है, मेरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा बन गई है।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नए भारत के नए तीर्थ बनने लगे दामोदर के तट पर। हर बांध एक तीर्थ, हर उत्पादन केंद्र एक नया मंदिर, अनेक नए नए औद्योगिक संस्थान खड़े हो गए इसके किनारे।

पक्षियों का कलरव गूंजता था। लोक जीवन के गीत ध्वनित प्रतिध्वनित होते थे। अब मशीनों का घर घर लौह संगीत सुनाई पड़ता है।

0: ये बोकारो जिले में तोनू गांव के निकट तोनू घाट बांध है दामोदर नदी पर, बोकारो थर्मल पावर प्लांट के दक्षिण पश्चिम में। सन 1965 में इसकी नींव पड़ी थी। जलापूर्ति 1972 से शुरू हुई। बोकारो स्टील प्लांट और दूसरे उद्योगों को तो इससे जलापूर्ति की ही जाती है। बंगाल के कई भागों तक इसका पानी पहुंचता है।
1: वही देखो वहां छोटे छोटे हरे भरे वृक्ष और झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की बगल में कोई फैक्ट्री है। चिमनी से निकलता धुआं काला नहीं, नीला नहीं, बिल्कुल पीला, जिसमें कभी कभी लालिमा छिटक पड़ती है। नीला आकाश और उसमें तिरते बादल के टुकड़े उस पीले धुएं में रंग जाते हैं।
0: ये गोनिया का बारूद कारखाना है। इसके प्रशासनिक सेवा प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा के शब्दों में,
2: भारत में पहला और सबसे बड़ा व्यावसायिक बारूद का कारखाना छोटा नागपुर के कोनार और दामोदर नदियों के बीच स्थित है। इस कारखाने का उद्घाटन 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। राष्ट्र के निर्माण में सतत सहयोग देता आया है।
0: उधर एक और नया मंदिर है, दामोदर की सहायक नदी बोकारो पर निर्मित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, और वहीं थोड़ा आगे बढ़कर दामोदर पर बना चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। बोकारो का स्टेशन जब 60वें दशक में बना था तब देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र था, और यही है बोकारो का लौह उत्पादक औद्योगिक संस्थान BSL, जिसकी परियोजना अधिशासी निदेशक यज्ञ प्रकाश शर्मा ने बताया।
3: बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना एक कंपनी के रूप में 29 जनवरी सन 1964 को हुई थी। इस स्टील प्लांट की जो कल्पना की गई वो ही इन मुद्दों को देख करके की गई कि इस स्थान में हमको पास में ही अयस्क है, कोयला है और पानी है।
0: दामोदर पर आधारित स्टील प्लांट सिर्फ बोकारो में नहीं है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेश झा अजीत के शब्दों में,
4: दामोदर नदी पर आधारित है भारतीय इस्पात प्राधिकरण के 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, बर्नपुर एवं बोकारो। बर्नपुर, दुर्गापुर एवं बोकारो के इस्पात कारखानों का देश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान रहा है। इन कारखानों ने इस क्षेत्र की काया ही पलट दी है।
0: ये सिंदरी का खाद कारखाना है, स्वाधीन भारत में पब्लिक सेक्टर का पहला खाद कारखाना। मशीनें चल रही हैं, भट्टी के चिमनी से आग की लाल लाल लपटें निकल रही हैं। धुएं के बादलों से एक ओर का पूरा आकाश ढक गया है। इस कारखाने के बारे में भारतीय खाद निगम सिंदरी के विद्युत एवं जल सेवा अधीक्षक दीप नारायण प्रसाद,
5: फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी यूनिट की स्थापना 1951 में, कमिश्निंग 1951 में हुई। उस समय इसकी स्थापना दामोदर नदी के किनारे इसलिए की गई कि पानी की आवश्यकता काफी पर्याप्त मात्रा में इस कंपनी को है।
1: मैंने इस क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खुले हाथों से अपना वरदान लुटाया है। मैंने लोगों को जल की सुविधा दी, विद्युत उत्पादन केंद्र बने, कल कारखाने खुले, और ये सब संभव हो सका मेरी कोयला खानों से।

0: उपलब्ध इस काले सोने की संपदा का आधा हिस्सा दामोदर की तटवर्ती खानों से ही निकाला जाता है। सीसीएल के बीएमके क्षेत्र के डिप्टी चीफ सर्वे ऑफिसर एन पात्रो का कहना है,
1: बिहार से बंगाल तक जितना कोयला है यही दामोदर का चलते ही हुआ है और ये दामोदर के ही है, दान है। बीएमके क्षेत्र में यहाँ दामोदर का नीचे बहुत से कोयला है, जिसके लिए हम लोग दामोदर रिवर को दूसरे तरह से डाइवर्ट करने का प्रोग्राम बनाया है।
0: सचमुच सार्थक नाम है दामोदर का। कभी सांस्कृतिक दृष्टि से ये सार्थक रहा होगा, आज भौतिक संपदा की दृष्टि से सार्थक है। इस नदी के उदर में विशाल भौतिक संपदा छिपी हुई है।
2: मैंने लोगों को अपनी संपदा दी है, उनके जीवन को विभिन्न रूपों में समृद्ध बनाया है।
0: दामोदर के जीवनदायी महत्व को उसके तटवर्ती उद्योगों, संस्थानों और बस्तियों के लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। भारत कोकिंग कोल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र के प्रधान प्रबंधक आर सी पांडे कहते हैं,
3: दामोदर नदी हम लोगों के लिए एक बड़ी देन है इस एरिया के लिए। उसके नहीं होने से हम लोग कुलेरी वालों को जल के लिए तथा बालू के लिए तकलीफ होती है। ये विदित है कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग कोयला निकालकर बालू भर देते हैं ताकि ऊपरी सतह या विलेज या शहर डैमेज ना हो, और इसके लिए हम लोगों को बालू इस दामोदर नदी और बराकर नदी से मिलता है।
2: कितना अंतर आ गया है मेरे जीवन और परिवेश में। आज जहाँ खाने हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, नए बसे शहर हैं, वहां कभी जंगल थे, सिर्फ जंगल।
0: द इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध बुले इमाम कहते हैं,
4: हमारा दामोदर नदी भी ऐसे ही एक पूरा जंगल का इलाका था। कमरपेट पहाड़ जहाँ से उठती है, वहां से लेकर के रानीगंज कोलफील्ड तक ये जंगल ही जंगल था।
0: बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के स्थान से विस्थापित सोहन गोप,
5: अभी तो हम यहाँ के जो है से खास करके जो है से बासी हैं, और यहाँ के मेरा जो है से बाप दादे ने जो है से इस मकान को यहाँ से रखा, खेत जमीन भी सब बनाया इस जगह पर। हम लोग को पूरा जो है से जीवन इसी में हम लोग को व्यवत करता था। खेत बाड़ी था चारों तरफ से, इसमें जो है से सब उपजाऊ जमीन था, जंगल भी काफी था।
2: मेरे तट पर अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर बस गए हैं, पर आज भी किनारे पर बसे गांव के लोग अपना सहज जीवन जीते जा रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए, पर्व त्योहार मनाते हुए।
0: तटवर्ती गांव के लोग नाचते गाते जी रहे हैं, पर जमाने का दर्द उनके गीतों में भी उतर आया है।
6: ना वो दो नदी बस्ती हड़ का ना वो लेखा पोड़ा आते
0: को, हम लोग पशु की तरह मेहनत करते हैं ना वो तो कुछ पैसा मिलता है। हम आदिवासी बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं। हम लोग माटी काट कर बच्चों का पालन करते हैं।
2: उनसे भी अधिक गहरा दर्द उनका है जो अपनी जमीन से विस्थापित हो गए हैं।
0: मैथन बांध के निकट गोगना गांव का रहने वाला मैनेजर टिडू कहता है,
3: पहले खेती बाड़ी करते थे, जमी जगह भी था, बांध पुखुर भी था, और ऐसे फालतू का दिन में मछली उछली भी हम लोग पकड़ते थे। अभी तो मछली मिलने से भी उतना हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे करता है तो लेकिन डीबीसी को पकड़ लेता है, आप लोग काहे मछली पकड़ते हैं।
0: जी विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है, पर हैं तो वे अपनी धरती से विस्थापित हैं।
2: हाँ, दामोदर की संतानें विस्थापित हुई हैं। मुझे उनसे सहानुभूति है। पुरानी व्यवस्था बदलती है तो कष्ट तो होता ही है, पर नई व्यवस्था बनने के अपने लाभ भी हैं।
0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अजीत,
7: छोटे छोटे गांवों के समूह के स्थान पर आधुनिक सुविधा संपन्न नगर विकसित किए गए हैं। इन संयंत्रों ने जहां स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर दिए हैं, वहां लघु उद्योगों की स्थापना में भी अपना

0: अमूल्य योगदान दिया है। अनजाने गांव व कस्बे आज भारत के मानचित्र पर गौरवमय स्थान अर्जित कर चुके हैं।
1: खाने में नए औद्योगिक संस्थानों में नए बसी नगरों में लोगों को नई नई सुविधाएं मिली हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किनारे की क्षेत्रीय संस्कृति अखिल भारतीय संस्कृति में बदल गई है। बोकारो के सांस्कृतिक जीवन से जुड़े अमलेंद्र चैटर्जी कहते हैं,
2: यह हम लोगों को एक गर्व है कि आस्ते आस्ते स्टील प्लांट बढ़ते हुए हम लोगों का संस्कृति भी बढ़ते गया है। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में हमारा भारतवर्ष का हर एक प्रोविंस का ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंस का कुछ ना कुछ आदमी एम्प्लॉयड हुए हैं। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हर एक जाति हर एक भाषाओं का संस्था डेवलप करने लगा, जैसा आपको भोजपुरी समाज फॉर लोकल भोजपुरी पीपल, देन उत्कल पठागार था फॉर ओरियल्स, मिलवर्तन संस्था था फॉर पंजाबी पीपल, देन मलयाली समाजम था फॉर केरलाइट्स, देन अंध्रा एसोसिएशन फॉर अंध्राइट्स, तमिल मंद्रम फॉर तमिल पीपल, कनाडा संघ था फॉर कर्नाटक पीपल।
1: इसी प्रकार विभिन्न धर्म वाले के लिए धर्म स्थानों की व्यवस्था हुई है। राम मंदिर, शिव मंदिर, कालीबाड़ी, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, बौद्ध विहार आदि। ये सिर्फ बोकारो और सिंदरी की बात नहीं, सभी नए बने औद्योगिक नगरों में भी यही बात है। दामोदर भारतीय संस्कृति का नद है, सर्वधर्म समन्वय का नद है।
3: माँ कल्याणेश्वरी के मंदिर से आरती की आवाज आ रही है, मैथन से माई के स्थान यानी माई स्थान से। शताब्दियों पहले माता कल्याणेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मैंने इसे बनते देखा है। सिद्धपीठ है यह, एक तरह से बराकर के तट पर स्थित है यह मंदिर। बहन बराकर वहां से आगे बढ़कर मुझसे यहाँ सिंगोरिया में मिलती है और इसके बाद हमारी यात्रा साथ साथ चलती है।

ये बंद भूमि है जिसे कभी दामोदर के जल प्रवाह ने बार बार तबाह किया था। 1955 में दामोदर तक दुर्गापुर बांध का उद्घाटन हुआ और फिर अनेक नहरें निकाली गईं, तो इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। बाढ़ का आना तो रुका ही, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और पूरा क्षेत्र अत्यंत उर्वर बन गया।

0: त्रिवेणपुर उत्पाद संयंत्र बना तो इस क्षेत्र का रूप ही बदल गया। काल के घने जंगल, छोटे छोटे गांवों और खेतों से घिरे दुर्गापुर को लोग जंगल महल के नाम से जानते थे। कारखाना खुला तो देखते देखते सारा ग्रामीण परिवेश एक आधुनिक विस्तृत औद्योगिक नगरी में बदल गया। मैं इसका साक्षी हूँ।
1: इतना औद्योगिक विकास शायद ही किसी अन्य नदी के तट पर हुआ है। दामोदर के किनारे विकसित उद्योगों ने उसके लिए ही नहीं, उसके तटवर्ती समग्र जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। उसके किनारे 15 कोल वॉशरीज हैं, 6 पावर प्लांट हैं, 4 उर्वरक और रासायनिक संयंत्र हैं, 1 सीमेंट फैक्ट्री है, स्टील प्लांट भी है, बारूद कारखाना भी है। इन सब के बहिर्स्राव, राख, कोयला चूल, तेल के धोवन आदि से दामोदर का जल प्रदूषित हो रहा है, उसका जल विषाक्त बन रहा है।
0: इसी से कहता हूँ, मुझे विष की धारा में मत बदलो। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम मुझे जीवन दो। मैं तो समय का यात्री हूँ, समय के साथ चलता आया हूँ। बंगाल की सच्च श्यामला धरती पर मैं हुगली नदी में मिलता हूँ और उसी के साथ जाकर सागर में समाहित हो जाता हूँ।

रखा है दामोदर। ये बांधे का मत है, निर्माणों का मत है, खनिज संपदा का मत है, सुख समृद्ध का मत है, अभिशाप से वरदान में रूपायित हो जाने वाला मत है। ये कृषि संस्कृति और औद्योगिक सभ्यता के समन्वय का मत है, सौंदर्य और पौरुष का मत है, भक्ति और शक्ति का मत है। शताब्दियों से बहता चला आया है, बहता चला जा रहा है दामोदर।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: देवाधिदेव महादेव की लीला के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्यों के धर्म नाश के पश्चात भगवान शिव शंकर त्रिपुरासुर वध के लिए उद्धत हुए। शंकर रूपी अपने काल को समक्ष देख त्रिपुरासुर तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने उनसे वर मांगा कि वे अपने हर जन्म में महाप्रभु के भक्त बने रहें। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने अपने एक ही वाण से त्रिपुर और उसके सब वासियों को भस्म कर डाला और ऐसे अंत हुआ दैत्य माता दिति के वंश का। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, पिछली भेंट में आपने बताया था कि तारक वंश के विनाश से भी दैत्य अत्याचारों का अंत नहीं हुआ। इस क्रम में अगला महादैत्य जलंधर था।
2: द्विज श्रेष्ठ शौनक जी, जैसा मैंने कहा था, जलंधर की उत्पत्ति का निमित्त स्वयं देवाधिदेव थे।
1: तो सुनाइए ना ये वृत्तांत महाभाग।
2: शौनक जी, त्रिपुरासुर वध के पश्चात जगत कुछ समय के लिए शांत हो गया। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र महामहिम भगवान शिव शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। महाप्रभु ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से रूप बदलकर उन्हें मार्ग में ही रोक लिया।
3: महापुरुषों, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से कैलाश पर विराजे हैं?
4: अरे जटाधारी, क्या तू हमें नहीं पहचानता? हम देवेंद्र हैं और ये हैं ब्रह्म ऋषि देव गुरु बृहस्पति। तू कौन है तथा हमारा मार्ग क्यों रोके बैठा है?
3: मैं तो एक साधारण शिवगण हूँ, कैलाश मार्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूँ।
4: तो जा अपने स्वामी को सूचना दे कि हम इंद्र उनसे साक्षात्कार के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, तू अभी तक बैठा है, जाता क्यों नहीं?
5: मैं तुझे अभी अपने वज्र से प्राणहीन कर

0: अरे ये क्या, मेरा वज्र धराशाही होकर भूमि पर गिर पड़ा, और ये शिवगण कुपित होकर ये क्या रूप धारण कर रहा है? देवराज, ये तो स्वयं देवाधिदेव हैं। देखिए, इनका तीसरा नेत्र खुल रहा है।
1: क्षमा महाप्रभु, क्षमा। बृहस्पति का दंडवत स्वीकार करें प्रभु, अपनी इस क्रोधाग्नि को रोक लें प्रभु। देवराज से अनजाने में भूल हो गई प्रभु।
2: देव गुरु बृहस्पति, अहंकार के मारे देवताओं को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे अपने बल के गर्व पर किसी साधारण व्यक्ति को अपमानित करें।
0: भगवान, आप तो सदैव भक्तों पर दया करते हैं, अपने भक्त वत्सल स्वरूप को सार्थक कीजिए प्रभु।
2: मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है इंद्र, मैं अब अपनी इस क्रोधाग्नि का क्या करूं?
1: देव, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए प्रभु।
2: गुरु बृहस्पति, हम आपकी बुद्धिमता से प्रसन्न हुए, आपने इस अहंकारी इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं आपको जीवन दाता के नाम से विख्यात करता हूं और अपने नेत्रों की अग्नि को क्षीर सागर में डालता हूं।
0: अरे महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए। देवादि देव की क्रोधाग्नि क्षीर सागर में पड़ते ही ये कैसा दिव्य बालक प्रकट हुआ है, परंतु कैसा विकराल रुदन है इसका। इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा है।
3: हे परम पिता ब्रह्मा, कुछ कीजिए, जगत को इस कर्ण भेदी रुदन से बचाइए, इस बालक का नाश कीजिए।
4: हे समुद्रराज, ये बालक किसका है, क्यों इतना रुदन कर रहा है?
5: हे परमपिता, ये तो ज्ञात नहीं कि ये बालक किसका है, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि ये गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है।
4: लाइए, इसे हमारी गोद में दीजिए।
5: ये लीजिए विधात, आप ही इस बालक के जात कर्मादि संस्कार कीजिए।
6: अरे, अरे ये क्या कर रहे हो बालक?
0: इंद्रदेव,
6: बालक
0: ने रोते रोते परम पिता की ग्रीवा को हाथों से जकड़ लिया है। देव गुरु, पीड़ा के कारण ब्रह्मदेव के नेत्रों में अश्रु उमड़ आए हैं।
6: शांत शांत समुद्र पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इसके कारण मैं इस बालक का नामकरण जलंधर करता हूं। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। ये सभी शास्त्रों का ज्ञाता महापराक्रमी महाधैर्यवान तथा महायोद्धा होगा, मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य।
2: आज्ञा आदि गुरु ब्रह्मदेव।
4: शुक्राचार्य, तारक वंश के अंत के पश्चात आप शिष्यहीन हो गए हैं, हम आपको एक महातेजस्वी शिष्य प्रदान करते हैं। आप इन असुर राज जलंधर का राज्याभिषेक कीजिए, फिर कालनेमी असुर की अति सुंदर कन्या वृंदा से इसका विवाह संपन्न करवाइए।
2: परम पिता, आप धन्य हैं, समय समय पर अपने शिष्य शुक्राचार्य को भी आप शिष्य प्रदान करते रहते हैं। आपका प्रस्ताव अति उत्तम है। कालनेमी की पुत्री वृंदा सर्वथा जलंधर के योग्य है। वो पतिव्रता, सौभाग्यशाली तथा शीलवती है।
4: सागर पुत्र जलंधर।
7: आज्ञा देव।
4: हमारा वरदान है, शक्ति में तुम शिव पुत्र कार्तिकेय के समान होंगे। शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध और कोई नहीं कर सकेगा। मृत्यु के पश्चात तुम वहीं लौट जाओगे जहां से उत्पन्न हुए हो।
7: आपके आशीर्वाद।

0: बात से मैं कृतार्थ हुआ परमपिता ब्रह्मा। दैत्य राज जलंधर की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राज सभा में आने की अनुमति चाहते हैं।
1: मूर्ख सेवक, दैत्य गुरु को किसी भी सभा में आने की अनुमति की आवश्यकता नहीं, उन्हें तुरंत आदर पूर्वक लेकर आओ।
0: जो आज्ञा दैत्यराज।
1: सभासदों, स्मरण रहे, दिति प्रसंग के पश्चात शुक्राचार्य हम असुरों से खिन्न हैं, परंतु हम असुर उनके मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं है, उनके आदर सम्मान में कमी ना रहे।
2: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
3: जय।
2: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
3: जय।
2: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
3: जय।
4: यशस्वी भव दैत्य प्रजा।
0: दैत्य गुरु, यहां हमारे समीप आसन ग्रहण करें, अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। दैत्य गुरु,
4: वत्स जलंधर, समुद्र मंथन की घटना के सहस्रों वर्षों के पश्चात भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिली है।
0: दैत्य गुरु,
4: मेरे प्रिय शिष्य राहु का कटा हुआ शीश आज भी मुझे द्रवित कर देता है। मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने को आतुर हो उठता हूं।
0: दैत्य गुरु, दैत्य भ्राता, राहु का शीश क्यों काटा गया?
4: समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त हुआ अमृत देवता पी गए, परंतु फिर भी अमृत शेष रह गया। राहु ने देवता रूप धारण कर उसे पी लिया।
0: क्या पी लिया? फिर दैत्य गुरु, उन्हें अमृत तो प्राप्त क्यों नहीं हुआ?
4: इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने शेत देख लिया। इससे पूर्व कि अमृत राहु के गले से उतरकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता, विष्णु ने उसका शीश काट डाला।
0: दैत्य गुरु, आज्ञा करें। दैत्य गुरु, देवताओं के इस कुकृत्य का दंड देने के लिए आपके इस शिष्य को क्या करना होगा?
4: दैत्य राज जलंधर, दुष्ट इंद्र को मेरे पूर्व शिष्यों ने अनेक बार इंद्रलोक से बाहर निकाला। इस बार कुछ ऐसा उपाय करो कि परास्त होने के पश्चात इंद्र लौट ना सके। संपूर्ण त्रिलोकी सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाए।
0: दैत्य गुरु, ऐसा तो मात्र युद्ध से ही संभव है।
4: तो इंद्र से युद्ध करो। तुम्हें ब्रह्मा का वरदान है, शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता। और वत्स जलंधर।
0: आज्ञा दैत्य गुरु।
4: ब्रह्मा ने वृंदा से तुम्हारा विवाह करवाकर बहुत बड़ी भूल कर डाली है।
0: भूल कर डाली? वो कैसी दैत्य गुरु?
4: तुम्हारी पत्नी का सतीत्व अति तेज में है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध होगा।
0: दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया।
4: वत्स, वैसे तो किसी भी पत्नी का पति व्रत धर्म उसके पति का बल होता है। वृंदा तो अखंड पतिव्रता है, उसके इस धर्म का भेदन ही तुम्हारी पराजय का कारण बन सकता है। और शिव कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि विजय के लिए किसी स्त्री का शील भंग किया जाए। अतः तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो।
0: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुंभ,
1: निशुंभ।

0: आज्ञा दैत्य राज।
1: अपनी समस्त सेना इंद्र के नंदन वन में उतार दो, युद्ध होगा।
2: गुरु शुक्राचार्य, ये हम क्या देख रहे हैं? मरे हुए देवता पुनः कैसे जीवित हो रहे हैं? हमें तो ज्ञात था कि पुनः जिलाने की विद्या मात्र आपके पास है।
3: देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधियां ला लाकर ऐसा कर रहे हैं।
2: फिर इस युद्ध का अंत कैसे संभव होगा दैत्य गुरु, कैसे संभव होगा? सभी असुर और देवता मर मर कर जी उठेंगे, फिर आपके संजीवनी मंत्र का महत्व ही क्या रह गया?
3: क्रोधित क्यों होते हो? यदि बल है तो द्रोणगिरी पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंको।
2: बल, बल। देखिए मेरा बल।
4: अरे ये क्या देव गुरु, जलंधर ने तो द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़ डाला।
5: हाँ देवराज, और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब तो देवताओं को पुनः जीवित कर पाना संभव नहीं है, अब तो पलायन ही उचित होगा।
4: परंतु देव गुरु, हमारे साथ ये क्यों हुआ?
5: स्मरण करो देवराज, तुमने कैलाश यात्रा पर गण रूपी शिव जी का अपमान किया था, ये उसी का फल है।
4: हे महाप्रभु, हे शिव शंकर, क्षमा प्रभु क्षमा। हे विष्णु भगवान, देवताओं का उद्धार कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु।
6: विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ, परंतु माते लक्ष्मी, आप इस युद्ध स्थल में?
7: इंद्रदेव, मैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई लक्ष्मी हूँ, अतः समुद्र मेरे पिता हैं। जलंधर की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है, अतः वो मेरा भ्राता हुआ। मेरा भ्राता मेरे ही पति द्वारा कैसे मारा जा सकता है?
6: प्रिय, ये युद्ध अच्छाई और बुराई के मध्य है, इसमें ना कोई भ्राता है ना पिता, और ना ही कोई अन्य संबंधी है।
7: देव, मैं मात्र इतना जानती हूँ कि मेरे तो आप हैं और एक भ्राता जलंधर है। युद्ध से किसी को भी हानि पहुंचे वो मेरी ही होगी। मैंने जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपसे भ्राता के प्राणों की भिक्षा मांग रही हूँ।
6: देवी लक्ष्मी, आपने तो हमारे समक्ष बहुत कठिन स्थिति उपस्थित कर दी है। ठीक है, मैं जलंधर को स्वयं नहीं मारूंगा, परंतु देवता मेरे भक्त हैं, इनके आग्रह पर युद्ध अवश्य करूंगा। गरुड़राज, युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया जाए।
4: देव गुरु बृहस्पति, ये क्या, भगवान विष्णु तक जलंधर से परास्त हो गए?
5: अवश्य ही ये कोई शिवलीला है, भगवान विष्णु तो जलंधर की प्रशंसा कर रहे हैं।
6: दैत्यराज जलंधर।
8: आज्ञा देवीश।
6: तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने भयंकर आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, चराचर त्रिलोकी में तुम्हारे

0: तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। मांगो, वर मांगो।
1: हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें। आज से आप मेरी बहन तथा सभी कुटुंबियों सहित मेरे ही लोक में निवास करेंगे।
0: परंतु जलंधर, ये संभव नहीं है। हा? हमारा आसन रिक्त हो जाएगा।
1: देवेश, वहां मैं किसी विष्णु भक्त को आरूढ़ कर दूंगा। आपको मेरा ये आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा।
2: देव, कुछ ही समय की तो बात है, अनुज का आग्रह स्वीकार कर लीजिए ना।
0: ठीक है देवी, ऐसा ही होगा जलंधर।
1: देवेश, मैं धन्य हुआ विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ।
3: दैत्यों, युद्ध बंद हुआ, प्रस्थान।
4: देवगुरु, ये तो बहुत अनुचित हुआ।
5: हाँ, लेकिन अचानक देवी लक्ष्मी के हृदय में ये भ्राता प्रेम कैसे उमड़ आया?
4: और भगवान विष्णु ने ये बात स्वीकार कैसे कर ली?
5: देवराज इंद्र, महाप्रभु की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
4: हाँ देवगुरु, आप ठीक कहते हैं।
6: नारायण नारायण नारायण,
4: ये तो एक प्रकार से जलंधर विष्णु हरि और देवी लक्ष्मी को अपना बंदी बना कर लेगा।
6: परंतु देवाधिदेव, एक असुर के लिए ये कैसे संभव हो पाया?
7: मुने नारद, किसी भी धर्म परायण व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और फिर उसने विष्णु जी को बंदी नहीं बनाया है, उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करवाकर अपने धर्म को अतिरिक्त बल प्रदान किया है।
5: परंतु देवाधिदेव, इस प्रकार तो जलंधर देवताओं की बराबरी के स्थान पर जा बैठा है।
7: बृहस्पति जी, आप तो देवगुरु हैं, अपने शिष्यों को आतिथ्य भाव का महत्व बताते रहते हैं। अतिथि सेवा अर्थात पुण्य का भागी बनना।
5: परंतु देवाधिदेव, यदि जलंधर इसी प्रकार अपने पुण्य बढ़ाता रहा तो एक दिन वो सर्वेश्वर बन बैठेगा।
7: ऐसा संभव हो सकता है बृहस्पति जी? और यदि यही होता है तो इस विधि के विधान को टालने वाले हम कौन?
5: अरे महाप्रभु तो बिना कुछ उपाय बताए ही अंतर्धान हो गए। मुने नारद,
6: कहिए देवगुरु बृहस्पति।
5: नारद, आपने अनेक विकट समयों पर देवताओं का उद्धार किया है, संभवतः महाप्रभु इसीलिए अंतर्धान हुए हो कि इस बार भी आप ही देव कल्याण का उपाय सोचें।
6: नारायण नारायण, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है देवगुरु बृहस्पति।
4: विष्णु भक्त नारद को अपने स्वामी को दैत्य जलंधर कारागार से मुक्ति तो दिलानी ही होगी।
6: नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, दैत्यराज जलंधर की जय हो।
1: अरे ब्रह्मर्षि नारद, आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं?
6: असुर श्रेष्ठ जलंधर, जो जय जयकार के योग्य हो उसकी जय जयकार तो करनी ही पड़ती है। मेरे प्रभु द्वारा आपका आतिथ्य स्वीकार करते ही आप मेरे भी तो पूज्य हो गए हैं।
1: आइए विराजिए, यहाँ हमारे समीप आसन ग्रहण कीजिए।
6: नारायण नारायण।
1: नारद मुनि, ये चारों ओर आप क्या देख रहे हैं?
6: आपका वैभव देख रहा हूं दैत्यराज। मैं तो समझता था
4: कि कैलाश पति शिव से अधिक वैभवशाली

0: इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। सहस्रों योजन तक फैले कल्प वृक्ष वन, सहस्रों काम धेनु स्वयं जटाओं में चंद्रमा धारण किए भोलेनाथ। परंतु
1: क्या मुने,
0: यहां आकर तो मुझे अपना विचार त्यागना पड़ा है। नारायण नारायण, क्या नहीं है आपके पास?
1: नारद मुने,
0: ऐरावत हाथी, उच्चय शुवा, अश्व, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, इंद्रलोक, पाताल, पृथ्वी लोक के समस्त रत्न। जलंधर, आप तो सभी के स्वामी हो, स्वामी। परंतु
1: अब परंतु कैसा मुनिवर?
0: आपके पास स्त्री रत्न नहीं है,
1: है? स्त्री रत्न? महामुने, काल नेमी असुर की अति सुंदर पुत्री वृंदा मेरी पत्नी है।
0: अवश्य है, अवश्य है। दैत्यराज, आपके पास सब कुछ ऐसा है जो देवाधिदेव से उत्तम है। परंतु क्षमा करें, देवी वृंदा शिव पत्नी सर्वांग सुंदरी पार्वती के समक्ष उनकी भी आभा फीकी पड़ती है।
1: क्या?
0: मेरे विचार से तो पार्वती जैसा स्त्री रत्न योगी शिव के योग्य नहीं है।
1: भाई,
0: उसे तो आपकी शोभा बनना चाहिए।
1: परंतु मुने।
0: किंतु परंतु कैसा असुराज? जब तुम्हारा बल देख स्वयं नारायण तुम्हारे लोक में वास करने लगे हैं, तो क्या मांगने पर शिव तुम्हें पार्वती नहीं दे देंगे? विष्णु जी के यहां आने से वैसे ही उनकी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है।
1: मुने नारद, क्या ऐसा संभव है? क्या मैं उस अति सुंदर नारी पार्वती को ग्रहण कर सकता हूं?
0: नारायण नारायण, कर सकते हो अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो प्रयास तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पार्वती तुम्हारे अंक शाइनी हो जाए तो
1: होंगी होंगी मुने नारद, अवश्य होंगी। दूत राहु, आज्ञा दैत्यराज, जाओ योगी शिव से हमारे हृदय की इच्छा व्यक्त करो और पार्वती को अपने साथ लेकर आओ। उसका सौंदर्य वर्णन सुनकर हम क्षण भर भी उसके बिना नहीं रह सकते। जाओ, तुरंत अपने साथ लेकर आओ। जाओ।
2: जो आज्ञा।
0: नारायण नारायण नारायण।
3: और परम ज्ञानी शौनक जी इस प्रकार उस महादैत्य की बुद्धि भ्रष्ट कर नारद मुनि प्रसन्नता से लौट गए।
4: अर्थात महाभाग सूत जी जिस धर्म आचरण के बल पर असुर राज जलंधर इतना पराक्रमी और बलशाली बना था, नारद मुनि ने अपने चतुर वाक वाणों से उसे ही भेद डाला।
3: हाँ शौनक जी, यदि प्रवृत्तियां इतनी सरलता से बदल जाती होती तो क्या सभी मानव और असुर देवता न बन गए होते? कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्राणियों के भीतर दबी प्रवृत्तियां सर उठाती ही हैं और उनके नाश का कारण बनती हैं।
4: तो जलंधर के हृदय में जागी इस आसुरी प्रवृत्ति ने उसका कैसे नाश किया महाभाग?
3: ये जानने के लिए तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शौनक जी।
2: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 13वें

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण।

0: या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिम

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानापूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि किस तरह श्री राम के परम भक्त हनुमान लंका के अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। आप लंका दहन का पूरा प्रसंग भी सुन चुके हैं। इस बीच राम और उनकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंचती है और राक्षस राज रावण की असुर सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए मोर्चा संभालती है। अब सुनिए आगे। इस कड़ी के लेखक हैं डॉक्टर राम।

0: अंगद द्वारा रावण के सब समाचार पाकर श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलाया और लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और इसके लिए उपयुक्त सेनापति भी नियुक्त किए गए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। दूसरी ओर लंका में भी बड़ा कोलाहल मच गया। अहंकारी रावण ने सारा समाचार सुनकर कहा,
1: इन बंदरों की ढिटाई तो देखो, मरने चले आए। राक्षसों की सेना को बुलाओ। ये बंदर काल से प्रेरित होकर ही यहां चले आए हैं। मेरे राक्षस वीर भी न जाने कब से भूखे हैं। लगता है गृह बैठे यहां अरविंद दीना। सुबह सकल चारों दिश जाऊ, धर धर भालू की सब खाऊ।
2: श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय।
0: भयानक संग्राम होने लगा। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डा रही, झपट ही चरण गहि पटक मही, भज चलत बहुरी पचा रही। वानरों के आतंक से राक्षसों के समूह उसी भांति

0: भाग चले, जैसे प्रबल वायु के चलने से बादलों के समूह बिखर जाते हैं। लंकापुरी में हाहाकार मच गया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना, तो भागते हुए योद्धाओं को लौटाते हुए उसने क्रोध से कहा,
1: सुनो वीर, सुनो जौरन विमुख, सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा।
2: सचमुच हमें समर भूमि से नहीं भागना चाहिए, रण में लड़ने में ही वीर की शोभा है।
3: शत्रु को ललकारे और वानर भालू से भी।
2: कहाँ है अंगद और हनुमान,
1: नल नील और दुर्विंद कहाँ है?
4: श्री रघुवीर की
1: जय,
4: श्री रघुवीर की
1: जय।
2: वो देखो, हनुमान लंका के गढ़ पर कूद कर पहुँचे, एक पर्वत लेकर मेघनाद पर दौड़े।
1: अरे पंजम रथ सारथी निपाता, ताही हृदय महु मानस लाता।
2: उधर देखो, उधर देखो, उधर गढ़ पर हनुमान को अकेले जानकर अंगद भी उतर कर गढ़ पर चढ़ गए।
5: दोनों ही हमारी सेना के विरुद्ध क्रोध से लड़ने लगे हैं।
6: हमारी वानर सेना कितनी विकट है, अंगद और हनुमान दोनों ही दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। दोनों लंका को ध्वंस करते हुए ऐसे शोभित हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हैं।
0: इस भयानक संग्राम की कोई तुलना नहीं थी। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मा नहीं हारी। राक्षसों के दो सेनापतियों अकंप और अतिकाय ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भयो निमिख मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल धारा। घने अंधकार को देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। वे जहां तहां पुकारने लगे, हे राम बचाओ, हे रघुवीर रक्षा करो। तब कृपालु श्री राम ने हंसकर धनुष चढ़ाकर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया। उससे तुरंत प्रकाश हो गया। प्रकाश होते ही भालु बलिमुख पाई प्रकाशा, घाये हरख विगत श्रमुत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भाजे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भाली बलिमुख, रिपु दल बल बिचलाई। इधर तो श्री राम जी की सेना राक्षसों का विनाश कर रही थी, और वहां दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सी सुभट जे मारे।
7: मंत्रियों, बंदरों ने आधी सेना का संहार कर डाला। अब कहो क्या उपाय करना चाहिए? माल्यवंत
8: जी,
7: आप वयोवृद्ध और हमारे श्रेष्ठ मंत्री हैं, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
8: सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख कहुन सुख पायो।
7: क्या कहा?
8: तुम नहीं जानते लंकेश, स्वयं कृपालु भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जो स्वयं काल रूप हैं, जो दुष्ट रूपी वनों को जलाने में अग्नि की भांति हैं, जो गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, शिव और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे कैसे विरोध किया जा सकता
7: है?
8: इसीलिए अपनी शत्रुता छोड़कर उन्हें जानकी जी सौंप दो, और कृपा निधि परम स्नेही श्री राम का भजन करो।
7: अरे भागे, तू अपना मुंह काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं स्वयं तुझे मार डालता। जा, अब मेरी आंखों को अपना काला मुंह न दिखला।
8: लगता है तू श्री राम के हाथों अवश्य ही मरना चाहता है। चला जाता हूं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
9: पिताजी, प्रातःकाल मेरा चमत्कार देखिएगा, अधिक क्या कहूं, बहुत कुछ करूंगा।
7: तो ठीक कह रहा है मेघनाथ, मेरे मन में भरोसा है कि तू जो कह रहा है उसे करेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
10: घोषणाधीश दोनों भाई कहां हैं, जो समस्त लोकों में धनुर्धर प्रसिद्ध हैं? नल नील द्विज सुग्रीव। और अत्यंत बली अंगद और हनुमान कहाँ है? अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं हट पूर्वक उसे और सबको मारूंगा।
0: मेघनाद ने बड़ा विकराल युद्ध किया। उसके द्वारा अपनी सेना को विकल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ता है। उन्होंने एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ लिया और मेघनाद पर डाल दिया, पर पहाड़ गिरते देखकर मेघनाद आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी, घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे, देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया।

गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए। रघुपति निकट गये घननादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटे निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना।

0: लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लक्ष्मण जी के प्रहारों से मेघनाथ प्राण मात्र शेष रह गया। प्राण संकट में देख उसने वीर घातिनी छांडे सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान उन्हें श्री राम के निकट ले आए। छोटे भाई को मूर्छित देखकर प्रभु राम बहुत दुखी हुए। जांबवान के परामर्श से हनुमान लंका गए और वैद्य सुषेण को ले आए। वैद्य ने श्री राम के चरणों में माथा नवाकर हनुमान को पर्वत से औषधि लाने के लिए भेजा। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। मार्ग में रावण द्वारा प्रेरित काल नेमि का वध करते हुए हनुमान पर्वत पर पहुंचे। वहां औषध को न पहचानने के कारण पर्वत को ही उखाड़कर आकाश मार्ग से चले। जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तब देखा भरत, विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी।
1: श्री राम
2: जिस भाग्य ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया है उसी ने यह भयानक दुख दिया है। यदि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु राम के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर पीड़ा से मुक्त हो जाए, इसकी मूर्छा दूर हो जाए।

0: वनवास की प्रसंग में जब श्री राम जी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में विश्राम कर रहे थे तो षड्यंत्र रचकर लंकापति रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वानर आदि जातियों की सेना सजाकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। उसी युद्ध में मेघनाथ की शक्ति द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए हिमशिखर से औषधि लेने गया था। प्रातःकाल होने से पूर्व मेरा पहुंचना आवश्यक था।
1: हाँ दैव, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं प्रभु के एक काम भी नहीं आया। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रातःकाल होते ही सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित चढ़ो, मैं तुम्हें कृपा निधान राम के पास भेज दूंगा।
0: नहीं प्रभु, आपका प्रताप हृदय में रखकर मैं शीघ्र ही जाऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें।

आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान नहीं आए। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव से ही कोमल रहा है। मेरे लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में शीत कृष्ण और तीक्ष्ण वायु सहन की। हाँ, वैसा प्रेम अब कहाँ है। मेरे विकल वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं उठते। जो जनते बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेउ नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करिबर कर हीना। असम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जड़ देव जियावै मोहि। हाय हाय, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मेरा कठोर हृदय तुम्हारे शोक को कैसे सहन कर पाएगा। नीच जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौ पैसी मोहि तुम्हें ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हाय।

0: कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तो नींद से जागो भाई, वहां अपनी सेना नष्ट हुई जा रही है और तुम्हें नींद प्यारी रही है। उठो कुंभकर्ण।
1: भाई मुझे कैसे जगाया, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं?
0: कुंभकर्ण, मारीच की सहायता से मैं अयोध्या के वनवासी राजकुमार राम की पत्नी सीता को हर लाया था। उसी ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की है। हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्यों को खाने वाली अतिकाय, अकंपन और महोदराज सभी वीर युद्ध में मारे गए।
1: मूर्ख, जगत जननी का हरण कर तू अपना कल्याण चाहता है, राक्षस राज ये तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे किस लिए जगाया है? भाई अब भी तू अपना अभिमान छोड़ दे, श्री राम का भजन करे तो तेरा कल्याण होगा। श्री हनुमान जैसे वीर जिसके सेवक हैं, क्या वे श्री रघुनाथ सामान्य मनुष्य है?
0: कुंभकर्ण, ये तुम क्या कह रहे हो?
1: भाई बहुत बुरा काम किया तूने, पहले ही आकर अपनी बात मुझे क्यों ना सुनाई? तूने तो उस देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं। अच्छा तो अब तू अंतिम बार मुझसे भेंट कर ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं और तीनों तापों के दूर करने वाले श्याम शरीर और कमल नयन श्री राम के दर्शन करूं।
0: कुंभकर्ण, अब ये बेकार की बातें छोड़कर रक्षा का कोई उपाय करो।
1: अच्छा राक्षस राज, पहले मेरे लिए आहार लाओ। मदिरा के घट और भैंसों का समूह कहाँ है? आहार लेने के बाद मैं सेना लेकर राम से लड़ने जाऊंगा। ये सामने से कौन चला रहा है?
2: मैं आपका छोटा भाई विभीषण आपके चरणों में प्रणाम करता
1: हूँ। प्रसन्न रहो, कहो कैसे हो?
2: तात, लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तहीं गलानी रघुपति पहीं आये हूँ, देख दीन प्रभु के मन भाये हूँ।
1: सुन सुत, भयउ काल बस रावण,

0: अरे ये क्या, ये तो भाई कुंभकर्ण का सिर जान पड़ता है। हाँ भाई कुंभकर्ण, तुम भी रणक्षेत्र में मरण को प्राप्त हुए।
1: हे पिता, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति और रथ प्राप्त किया है वो अब तक मैंने आपको नहीं दिखलाया, कल देखिएगा।
2: प्रभात होते ही मेघनाद युद्ध भूमि में जा डटा। उसने विविध भयानक युद्ध किया। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से छा दिया। श्री राम की सेना के सभी वीर व्याकुल हो गए। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि की देह को बाणों से छलनी बनाकर मेघनाद ने श्री राम जी पर आक्रमण किया। उसने बाणों के नागपाश में श्री राम जी को जकड़ लिया। श्री राम भी नट की भांति अनेक प्रकार से कौतुक करने लगे। जब जांबवान ने मेघनाद को ललकारा, मेघनाद ने एक पैना त्रिशूल चलाया। जांबवान ने उसे बीच में ही पकड़कर मेघनाद की छाती में मारा। वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। उसने श्री राम के शरीर में लिपटे हुए सभी माया सर्पों को खा लिया। वानर के समूह भी माया से मुक्त होकर हर्षित हो गए। जब मेघनाद मूर्छा से जागा तो पिता को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। वो विजय यज्ञ करने की इच्छा से एक पहाड़ की कंदरा में चला गया। तभी विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से आकर कहा,
3: हे अतुल बल वाले प्रभु, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर उसे प्रभु शीघ्र ही जीता नहीं जा सकेगा।
4: अंगद, सुग्रीव आदि बंधुओं, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। और लक्ष्मण, तुम्हें उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भय से संतुष्ट देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। अपने बल और बुद्धि से इस भांति उस निशाचर को मारना जिससे वह क्षीण होकर मर जाए। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों लक्ष्मण के समीप सेना सहित रहना।
5: मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जोते ही आज बधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत्संग कर ही सहाई तदपि हतो रघुवीर दुहाई।

0: पापी को मैंने बहुत खेल खिलाया, अब इसे मारूंगा। जय श्री राम।
1: लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कहाँ है?
2: तेरी माता धन्य है मेघनाथ, धन्य है। तेरी मुख से मरते समय राम का नाम तो निकला।
3: जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ का वध सुना तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे और सभी रावण को अपशब्द कहने लगे। रावण ने सब स्त्रियों को समझाया कि समस्त संसार नाशवान है, किंतु स्वयं रावण पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। रात बीतने पर सवेरा हुआ और रींच तथा वानर फिर चारों द्वारों पर इकट्ठे हो गए।
4: सुनो, तुम रीछ और वानरों के झुंडों को मत हल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों से लड़ूंगा।
5: नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी जीता वीर भलवाना।
6: सखा सुनो, जिस रथ से विजय होती है वो दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु चोरे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतों रिपुताके। मित्र जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्गम शत्रु को भी जीत सकता है।
5: हे कृपाल, हे सुख निधान, इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया। प्रभु मैं धन्य हुआ। प्रभु

0: सिकंदर संभल, अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है।
1: जीते हो जे भट संजुग माही, सुनता पस मैं तिन समनाही। रावण ना

0: राम जगत ज सजाना, लोक बजा के बंदी खाना। खर दूषण विराद तुम हमारा, बदिर व्याद बाल बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नाद है मारे हु, आज बयर सब ले निबाही।
1: जो रण भूप भाजी नहीं जाही, आज करहु खलु काल हवाले, परे कठिन रावण के पाले।

0: बड़ा विकराल युद्ध हुआ। श्री राम जी ने बार बार रावण के सिर और भुजाओं को काटा और वे बार बार उगाए। आकाश में सिर और बाहु जैसे छा गए, मानो असंख्य केतु और राहु हूं। हनुमान, विभीषण आदि सभी के साथ युद्ध करते हुए रावण ने अपार शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। वानर सेना का विध्वंस देखकर जांबवान ने रावण की छाती में लात मारी। इससे रावण व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में उठाकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर तो ये सब हो रहा था, उधर उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें ये सब कथा सुनाई।
1: हो ये कहा कह से किन माता के विधि मरे ही पे सुख दाता। कैसे आश्चर्य की बात है कि रघुपति सर सिर कटे हूं न मरई, पिथ विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, चाहे हूँ हरिपद कमल बिछोही।
2: धीरज रखो राजकुमारी, मुझे पूरा भरोसा है कि हृदय में वाण लगते ही देवताओं का शत्रु मारा जाएगा। देखिए, प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय बसती बाय देही। सुंदरी, संदेह मत करो। सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो ही विकल, छुटी जा यही तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरे ही राम सुजान। चिंता मत करो, सब प्रकार तुम्हारा कल्याण ही होगा। अच्छा, देर हो रही है, मैं चलूं।
1: अरे दुष्ट चंद्रमा, तुझे शीतल कौन कहता है? तू तो बहुत ही दुखदाई है, और ये रात भी तो नहीं बीत जाती। हाय, युग संभय सिरा दिन राती। अरे इस समय ये मेरा बाया नेत्र और बाहु कैसे फड़क उठे? क्या क्या ये शुभ शकुन इस बात की सूचना है कि कृपालु श्रीराम जी से शीघ्र ही भेंट होगी? प्राणनाथ स्वामी,
0: आधी रात को रावण मूर्छा से जागा। उसने सारथी को धिक्कारा। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। फिर बड़ा भयानक युद्ध हुआ। श्री राम जी के बाणों से रावण के शरीर से रुधिर की धारा बह चली। स्रवत रुधिर धायु बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत सीस मही पारे। काटते ही पुनि भय

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

Oh,

நப்போய் வைத்த முலாமும் பூர்ண வைத்தமிலாசி காசி கொண்ட

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्या दुखियारी।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।